0: अजल वही हैं बारू बादू वेता हुतुनते हैं
1: ईवे
0: हबरु गणी हैं मगे मूनु गलकुनु लेवे हैं
1: ईवे
0: जहमु वणी हैं

बिल तो दक्कन फंसे है गोते मियोती फाइ पे ऐप बिल तक अंगारा जुमला अदु फाइ पे ऐप ट्रांसफर कोल्ला देंगा महुरिया बिल तक फैसा दक्का निम्मा लम्बी फोन फेंग गैस अदि मीडिया नेट बिलकस देखके ने रीलोड रास्टस नुनी डेटा पेक्वस नेगे नेंगे मी हम डिजिटल वॉलेट देने मस देबावैर बिल नु देखी गें लारिय वीनुए नेंगी गें उलेकन नुचे ने हुरिया डिजिटल पेमेंट का फाइ पे मा फाइ

0: पहले टॉप का हीरो था, अब फ्लॉप का हीरो।
1: फिल्मी व्यापार दिरासा कुरा फरार तक उन लफा कुरा गोतु का मी फ्रेंचाइज के ब्रांड वैल्यूशा मी बोर्ड कास्ट बलाफा मी फिल्म दुईसत्ता फंसा हा 300 करोड़ रुपीस आदि में दुगे आम दनीली बेने मी फिल्म के प्रीमियर के माहौल फेनिगन दिए मिहा गिन तारिंग हिमेने फिल्म को उम्मीद कुराने फदा कूला गदा गोतु का रेड कार्पेट आ मीडिया के बोर्ड समाल का मे फिल्म लिबी फावायरो Gina Dwasta ke vanden serious film ta ke beluma fahu Bollywood comedy ge ranzaman alun emburi afa da ihusa sekkureve. Ti Akshay ge adi Sunil Shetty ge feenen nama, nuwata Hindi comedy ge feenen nama, mi balala kamudani filme.

0: पंगा लेना है?
1: इरादा तो नहीं है पर इतराज भी नहीं है।
2: रिपोर्ट का फाहकुरे ट्रेलर तो के इतुरुं नेटफ्लिक्स उम्मीवनी किनबाई के मकबूल कं हो दाफवा एवेटा द लास्ट एयर बेंडर के सीजन ते के रस्मी ट्रेलर विस तक का लाफा मे ट्रेलर फेनिकेंदनी एंग एनगे आत बेंडिगे टीचर टोफा बदलवा मंजरा आदि वरुगद अजूला या कुरिमत लाथं मे आ सीजन के प्रीमिया पुरासर दो ए जून फंसवियु का नेटफ्लिक्स का प्रीमिया कोफवायर फुरतम सीजन कमदिया बेफुरना मिट्रेला एकनि फेरुनस यागिन वाणिकम की सीजन दे कुरियवरे मा बोडा मा फुरिहम आदि मा फोरिकत वाणिकम

झील से गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा काली जुल्फें नागन बन कर देती हैं जिसपे पहरा झील सी गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा काली जुल्फें नागन बन कर देती हैं जिसपे पहरा तुम पूछोगे मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हसीन मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली सी रहती है वो दूर कहीं।

जब खुदा किसी को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है। लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए वो खास बात खुदा में।

देख में गर्ज दे वे फमो में कटे करगो में कुरिए में गंदे टी टाइम रिक्वेस्ट के मेदु के शो में हा हिसाबों ने मालानी विस इतरो एहु तरी के रिक्वेस्ट का आए को एमे हा हु तरी ना वर उफावरे पर पाचोर वक्त थोड़ा कंगे दे अस्सलाम वालेकुम।

0: मिया हिसाब में ती सवाल तक एक कुरम फशाफा तो भी वेरी आया तो मैं सवाल तमी कुरन
1: मी ओ खामे दिमावे मा आयुसी मा दुर्गा इन्न मिया गिना फहर एने अदिवेस एदेवेन्या गिना फहर रेखा शकु अन्ना ने आर मेन दु चॉकलेट वेस्ती नी में एनो तो मेन दु का साइकिल फातुस के दिए में एवेन दु को एने के राजा वेस्ती मन्ना गा गेलीम एकाले त ख्याल कुरन एगो तो मिल एमेरिया मी लोबी के फलिकम बल्लवा के मी ख्याल कुरन कोबा है लोबी के खाना हाद खाना दिनी में हाद खाना के में दे मी केने मदद वेरे एही तेरे कम के मति वेरे बस्ता ठिकाना लोबी के बस्ता ये तो एक गो तक मी लोबी के बस्ता कम एबा बेले वे हेमे में ए बस्ता वे साले कोबा है गदर खेंडी के हिंगचे गे तो ए मिया दु ए हुरिहा चे के गदर खेंडी जे अनिक कम ए मसाय जे के तो गदर केने जे अदु मी न्यूलालनी ए हित एकी गहरन हित को मी वाहतम मी गोवेनी ए ए कोबा है ये बस्ता कुरी का वाउदे के वाह कालों ने देख के को मिहार में थी मिगोता
2: मिया फैन नहीं

0: का मतलब न होता। उसे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो या आपकी अपनी बीवी ही क्यों ना, नो मीन्स नो।
1: मी कौन फिल्म में गई मैंने डायलॉग है? मिसुआल का जवाब फणवाणी पीएसए में आमे दोरे को बालाना साड़ी शोया जवाब फणोम के सुंगड़िया की अंगार दोग में दम पार गड़ सु मिनट कम में हफ्ता एक स्कूरी एक गिंदा बालाना साड़ी मिशो का गेनेस ते केस्त डायलॉग के एम में गिने सुआल तो के जवाब रंगल कुरा बैवेरे का महा को एफआर नगा गुरतुं खास हादिया ली बेने एम में गिने सुआल के जवाब रंगल कुरा बैवेरे नगाणी कम में महे गिवस एम में फहुशोगा
2: केस्त डायलॉग ಮೀವಾಲ್ದಿನಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅದೆ ಜವಾಬ್ತ ಪಿಎಸ್ಎಂ ಎಯಾ ಮೆದುರುಕೊ ಬಲಾಲನ್ಸಳಿ ಶೋಯ ಫುಣ ಮುಂದಾಣಿ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬಂದೆ ಅಳ್ಗುಣ ದಿವಿಹಿ ಅಮಿಲ್ಲ ರಾವ್ಗೆ ಲವೆ ಶೋಗೆ ಇವ್ವಾಲ್ದೇನ ಲವೆ ಫೋ ಶೋಗೆ ಕುರಿಯಂ ಹುರಿ ಬ್ಯಾತಕಾಯಕೀಗ ಬತ್ತಿಳ್ಕೊಲ್ಲಾಣ

0: No, Your Honor. ना सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है Your Honor. इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती. ना का मतलब ना ही होता है. My client said no, Your Honor. And these boys must realize no का मतलब no होता. उसे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो या आपकी अपनी बीवी ही क्यों ना, नो मीन्स नो.
1: मी कौन फिल्म में गई मैंने डायलॉग है मिसुअल के जवाब फनवाने पीएसएम में आमे दोर को बालाना साड़ी शोया जवाब फनों के सुंगड़िया की अंगार दोहग में दम पार गड़ सुमिनट कौन में हफ्ता को स्कूरी एक गिंदा बालालन साली मिशोग गेनेस ते केस्टर डायलॉग के एम में गिनस वालतों के जवाब रंगल कुरा बैवरे का महा को इफ़ार नगा गुरोतुं खास हादिया एली बेने एम में गिनस वालों के जवाब रंगल कुरा बैवरे नगानी को में महे गिवस एम में फाहुश होगा
2: केस्टर डायलॉग ಮಿಹಫ್ತಾಗೆ ಏರಾ ಮಿಹಾರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಕಾ ಅಳ್ಗನುಗೆ ಅಮಾಜಕಿ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಮೂವಿ ಫ್ರೆಂಚೈಸೆಗೆ ಫೆಶಮುಂ ಫೆಶಿಗೆನ್ ಮಿಯದಾ ಹಮೆಯಂ ಆಸ್ಫವಾ ತಾರಿಹಿ ಬದಲ್ತಾಕ ಫುಂಕೊ ಪಲಾಲು ಮಿಗತುಂ ಎ ಫ್ರೆಂಚೈಸೆಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಕುರಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತಕುಂ ಫೆಶಿಗೆನ್ ಜಮಾನಂಗ ಬದಲ್ತಕಾಯಕು ವಾಹಕ ಬಿನಾಕುರುಂಗೆ ಉಕುಳುತಕ ಶಾ ಫಣ್ಣಿ ಗೊತುಂ ಗೆನಸ್ತೀಫವಾ ಇಂಗಿಲಾಬಿ ಕುರಿಯರುಂ ತಂ ಎಮ್ಮೆ ಫಾಹಕೊಲವೆ ಫ್ರೆಂಚೈಸಕಿ ಜೋರ್ಜ್ ಮಿಲರ್ಗೆ ಮೇಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಚೈಸ್
3: ಮಿಹಾರ್

0: No, Your Honor. ना सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है Your Honor. इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती. ना का मतलब ना ही होता है. माई क्लाइंट सेड नो Your Honor. एंड दिस बॉयज मस्ट रियलाइज नो का मतलब नो होता. उसे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो या आपकी अपनी बीवी क्यों हो, नो मीन्स नो.
1: मी कौन फिल्म में गई मैंने डायलॉग है मी सवाल का जवाब फणवाणी पीएसए में आमे दोर को बालाना साड़ी शोया जवाब फणोम के सुंगड़िया की अंगार दो होग मेंदम पार गड़ सु मिनट कौम में हफ्ता एक वस्कुरी एक गेंदा बालालन साली मिशो के गेनेस दे केस्ते डायलोग गे एम में गीन सुवालतों के जवाब रंगल कुरा बैवेरे का महा को एफारो नगा गुरातूं खास सहादिया एली बेने एम में गीन सुवालों के जवाब रंगल कुरा बैवेरे नगानी कौम में महे गिवस एम में फाहुशो का
2: केस्ते डायलोग
3: ಬಾಲಾಲನ್ ಸಳಿ

0: मी मरियम रिफ्का रशीद रिफ्का गैड दिवही एफएम दिवही एफएम दिवही नाइक दिवही नाइक
1: मोदी है 1 मेगाहर्ट्ज दिवही एफएम